सो दोस्तों इस दे नाल ही वेला हो रहा तुहाड़े तो इजाजत लैण दा। उम्मीद करदे हां कि तुहानू साडा अज दा प्रोग्राम खूब पसंद आया होवेगा। साडियां पेशकारियां जिहड़ियां प्रोग्राम दे विच तुहाड़े नाल असीं सांझियां कीतियां ने, गाहे बगाहे पढ़न सुणन वेखण दे वास्ते तुसीं SBS पंजाबी दे वख-वख जिहड़े प्लेटफॉर्म्स हैगे ने, चाहे ओह SBS पंजाबी दा फेसबुक पेज है, SBS पंजाबी दी वैबसाइट है, इंस्टाग्राम है जां यूट्यूब है, वख-वख साधनां दे राहीं तुसीं SBS पंजाबी दे नाल जुड़ सकदे हो। अज दे प्रोग्राम दे विच इन्ना ही, मिलेंगे पलके एक होर नवे नकोर प्रोग्राम दे नाल। मैनू अपने मेजबान पत्रस मसीह नू दिओ इजाजत। रब रखा, शबा खैर।

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Hindi on mobile, online and on radio.
1: आप सुन रहे हैं SBS हिंदी मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर।
2: दोस्तों SBS हिंदी के कार्यक्रम पर 4 मई 2026 की शाम और घड़ी में 5 बजते ही वक्त हो चला है खबरों की ओर रुख करने का भव्या पांडे के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के कार्यक्रम की शुरुआत हो इससे पहले हम इस धरती के पूर्वजों और कुलिन राष्ट्र के वुरुंजुरी और वुईबुरिंग लोगों को और उनके बुजुर्गों को सम्मान के साथ प्रणाम करते हैं। हम उन सभी आदिवासी और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर भूमि के पारंपरिक मालिकों को भी आदर पूर्वक याद कर रहे हैं जिनकी भूमि पर ये कार्यक्रम सुना जा रहा है। तो अगले घंटे में हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम लेकर आए हैं आपके लिए खबरें, बातें और खूब सारी इनसाइट्स। सबसे पहले हम सुनेंगे आज के ताजा समाचार। अब बात करते हैं आज की खास रिपोर्ट की जो कि ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय मूल के माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के जीवन अनुभवों पर केंद्रित रहेगी। इस रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत से दूर एक नए देश में अपने बच्चों और उनके परिवार के साथ रहना कैसा होता है। बदलते सामाजिक परिवेश, नई संस्कृति, भाषा की बाधाएं और जीवन शैली के अंतर, ये सभी पहलू उनके रोजमर्रा के जीवन को किस तरह से प्रभावित करते हैं, यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही आपको बता दूं कि ये जो अंश है ये हम दो भागों में आप तक लेकर आएंगे, जहां पर हम सामाजिक अलगाव और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी जो चुनौतियां ये वरिष्ठ नागरिक महसूस करते हैं उन पर भी बातचीत करेंगे एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट के साथ। तो आज के कार्यक्रम का जो मुद्दा है वो यही रहेगा। इसी के साथ आज का सवाल आपको जल्द बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई भी संदेश यदि आपको मुझ तक पहुंचाना हो तो नंबर है 04397997667। और साथ ही आपको बता दूं कि अपने संदेशों के माध्यम से आप मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहें क्योंकि मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कि देश और दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और जल्द आपके लिए कुछ बढ़िया से गाने और आज का खास सवाल भी लेकर आऊंगी। प्रस्तुत है 4 मई 2026 का न्यूज फ्लैश भव्या पांडे के साथ। ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी घटनाओं की जांच के लिए गठित रॉयल कमीशन इनटू एंटी सेमिटिज्म की पहली सार्वजनिक सुनवाई आज सुबह शुरू हो गई है। इस सुनवाई में कई यहूदी ऑस्ट्रेलियाई अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करेंगे। इसमें प्रमुख नाम एलेक्स रिफ्चन का भी है जिनका सिडनी स्थित घर 2025 की शुरुआत में एक हमले का निशाना बना था। आयोग की अध्यक्षता पूर्व हाईकोर्ट जज वर्जिनिया बेल कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में एक अंतरिम रिपोर्ट जारी की जिसमें दिसंबर में बोंडाई में हुए हमले पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों की प्रतिक्रिया का आकलन किया गया है। नॉर्दर्न टेरिटोरी के एलिस स्प्रिंग्स से लेबर सांसद चांसी पेच ने 5 साल की बच्ची कुमांजाय लिटिल बेबी की मौत को हार्ट ब्रेकिंग लॉस बताया है। इस मामले में पुलिस ने 47 वर्षीय जेफरसन लुइस पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दूं कि आरोपी पर 2 अन्य गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं जिन्हें कानूनी कारणों से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि अमरीका आज से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ में फंसे जहाजों को सुरक्षा प्रदान करेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत न्यूट्रल और इनोसेंट बायस्टैंडर्स जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिया जाएगा और किसी भी तरह के हस्तक्षेप का जवाब बलपूर्वक दिया जाएगा। सिडनी के कैंपबेल टाउन में एक कथित घरेलू हिंसा के गंभीर मामले में आज एक व्यक्ति अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के अनुसार रोसमीडो में एक 65 वर्षीय महिला और 25 वर्षीय युवक के शव बरामद किए गए थे। आरोपी पर 3 हत्या और 1 हत्या के प्रयास का आरोप है। एक अन्य व्यक्ति को लिवरपूल हॉस्पिटल में गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है लेकिन बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के सदस्य बताए जा रहे हैं जिससे ये मामला और भी गंभीर हो गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी खबरों में दक्षिण अटलांटिक में एक क्रूज जहाज पर संदिग्ध हैंटा वायरस के प्रकोप से 3 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार कुछ 6 मामले सामने आए हैं जो MV होंडियोस से जुड़े हुए हैं। ये जहाज अर्जेंटीना से केप वर्डे की ओर जा रहा था। ऐसे में विशेषज्ञों के अनुसार ये वायरस आमतौर पर संक्रमित चूहों के मूत्र या मल के संपर्क से फैलता है और गंभीर श्वसन रोग का कारण बन सकता है। हालांकि इंसानों के बीच इसका प्रसार बहुत कम देखा जाता है। कैनबेरा में पार्लियामेंट हाउस के लॉन पर आज 67 बॉडी बैग रखे जाएंगे। ये प्रतीकात्मक प्रदर्शन उन 67 ऑस्ट्रेलियाई लोगों को दर्शाता है जो हर दिन धूम्रपान से जुड़ी बीमारियों के कारण अपनी जान गंवाते हैं। ये प्रदर्शन अवैध तंबाकू संकट पर होने वाली सीनेट जांच से पहले जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। मीडिया से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर में प्रगतिशील संगठन गेटअप ने सरकार से मीडिया नियमन प्रणाली में व्यापक बदलाव की मांग की है। संगठन का प्रस्ताव है कि ऑस्ट्रेलियन प्रेस काउंसिल और ऑस्ट्रेलियन कम्युनिकेशन एंड मीडिया अथॉरिटी को समाप्त कर एक एकल स्वतंत्र नियामक संस्था बनाई जाए जो पारंपरिक और डिजिटल दोनों तरह के मीडिया को कवर करे। बात करें भारत की तो 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल की 294 सीटों में से 293 पर मतगणना जारी है। वहीं तमिलनाडु की 264 और केरला की 140 सीटों पर भी नतीजे सामने आ रहे हैं। इनके अलावा असम और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी चुनावी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। मतगणना के साथ ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने अगले 5 वर्षों के लिए किस दल या गठबंधन पर भरोसा जताया है और किसे अपना भाग्य विधाता चुना है। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये आपने सुना आज का न्यूज फ्लैश। अमेरिका ईरान संघर्ष के बढ़ने के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में प्रतिबंध जारी है, जिसके चलते लगभग 20,000 लोग फंसे हुए हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय मूल के एक पूर्व नाविक से बात की जिन्होंने इस क्षेत्र में जहाज चलाने के अपने अनुभवों के साथ साथ ऐसे हमलों के जोखिम का सामना कर रहे लोगों को लेकर अपने विचार SBS हिंदी के साथ साझा किए हैं। ये जो अंश है आप तक लेकर आ रही हैं नताशा कॉल।

0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं नताशा कॉल SBS हिंदी टीम से, और आज हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स की। तो ये तीन शब्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स आपने पिछले कुछ हफ्तों में बहुत बार सुने, पढ़े और बोले होंगे। वर्तमान में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स एक अहम मार्ग बना हुआ है, जहां अमेरिका, इसराइल और ईरान के बीच जारी तनाव ने वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है। कई जहाजों के चालक दल वहां फंसे हुए हैं और हमलों के खतरे का सामना कर रहे हैं। इस अंश में हम भारतीय नाविकों से बात कर रहे हैं, जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को पार किया है। हम जानेंगे उनका अनुभव कैसा रहा और वे वहां फंसे लोगों के सामने मौजूद खतरों को किस नज़र से देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एनर्जी एजेंसी के अनुसार वैश्विक समुद्री तेल परिवहन का 20% से अधिक हिस्सा इस संकरे जलमार्ग से होकर गुजरता है, जो इसे विश्व ऊर्जा आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। तो यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स के मार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है, तो इसका सीधा असर वैश्विक तेल कीमतों और आपूर्ति पर पड़ सकता है। वहीं यदि ये पूरी तरह बंद हो जाए तो वैश्विक गैस बाजार भी प्रभावित हो सकता है, और यही कारण है कि आज हम इस एपिसोड में इस पर चर्चा कर रहे हैं। और इसलिए हमने उन लोगों को साथ लाना महत्वपूर्ण समझा जो वास्तव में इस रास्ते से गुजरे हैं। मेलबर्न के रहने वाले अनिल भाटिया हमें बताते हैं।
1: तो शिप के ऊपर जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ऐसे कई स्ट्रेट्स थे, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप, तो क्रॉस करते थे, तो एक रूटीन सा, साधारण सा वो तजुर्बा था कि शिप नेविगेट करती है एज पर दी इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नेविगेशन। और वहाँ पर हर एक स्टेट में ये होता है, सेपरेशन स्कीम होती है, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम कहते हैं उसे, तो जैसे कि रोड लॉज होते हैं वैसे स्टेट्स के भी लॉज होते हैं, तो आने जाने के अलग अलग चैनल्स होते हैं, तो वो हम क्रॉस करते थे। कोई बड़ी चीज नहीं होती थी और अभी भी नहीं है, कोई उसमें बदलाव नहीं आया है, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो आदमी आम तरीके से अपनी शिप को लेके चले जाता था अपनी डेस्टिनेशन, गोइंग वेस्ट बाउंड इनटू द गल्फ ऑफ अरेबिया, जो अभी कहते हैं, पहले पर्शियन गल्फ कहते थे, और अपनी पोजीशन मार्क करते हुए निकल जाते थे, अपना कार्गो लोड करके वापस आ जाते थे। सो देयर वाज कुछ स्पेशल, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी।
0: तो आपने कब, किस साल में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को पार किया है?
1: तो कई बार ही किया है, अभी मेरा तजुर्बा काफी पुराना हो गया है, बट लाइक आई सेड स्ट्रेट भी वही है और वहां पर कोई खास तब्दीली नहीं आई है। तो मैंने किया था लास्ट 1991 में या 92।
0: तो क्या सारे स्ट्रेट एक जैसे दिखते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स में कुछ खास बात आपको नजर आती है?
1: नहीं, सब एक ही तरह है, वही इंटरनेशनल लॉज ऑफ नेविगेशन अप्लाई करते हैं हर एक स्टेट को
0: जी,
1: इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज जो स्टीयर करने पड़ते हैं और जो पोजीशन फिक्सिंग एड्स हैं, जो टोपोग्राफी है, वो सब अनोखे हैं अपने हिसाब से
0: जी। जी अनिल जी, ये जो इसको सबसे वो कहा जाता है नैरो चोक पॉइंट, तो ये बताइए कि जब जब लोग अपने जहाज को उस नैरो चोक पॉइंट से लेके जाते हैं, तो सबसे नाजुक स्थिति कौन सी होती है?
1: तो जो नैरो चोक पॉइंट है वो है बंदर अब्बास के पास, तो वहां पर ऊपर नॉर्थ में बंदर अब्बास है, नीचे है रसल खाइमा इन यूनाइटेड

0: SBS South Asian.
1: Your news from here
0: and hits from home.
2: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: आप ईरानी पोर्ट में जा रहे हो लाइक बंदर खुरमशहर या बंदर अब्बास या खरगालन, तो फिर ईरानी पोर्ट अथॉरिटी से आपने तो बात करनी पड़ती है. लेकिन अगर आप सीधा जा रहे हो कोई और पोर्ट में या कोई और देश के पोर्ट में, चाहे वो दुबई हो रसल खैमा में या दुबई में या कतार में दोहा में या सऊदी अरब में, तो या इराकी पोर्ट, कुवैत की पोर्ट, कई पोर्ट है वहाँ पर, तो फिर कोई किसी से बात करने की जरूरत नहीं पड़ती.
4: खैर आज की स्थिति देखें अनिल जी, तो बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है. वहाँ से जो लोग अपनी शिप को लेके या कार्गो की शिप को लेके गुजर रहे होंगे या गुजर रहे हैं, लेकिन आपके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ हो जब आप गुजर रहे हो कोई तनावपूर्ण स्थिति हो?
3: तो कई बार गए हैं वो, बेसिकली वहाँ पर ज्यादा करके क्रूड ऑयल टैंकर्स ही जाते हैं. तो हमारी भी VLCC थी, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, जो ओवर ए मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड लेके जाती हैं. तो हम भी वहीं पर, तो एक्चुअली इराक वॉर में भी मैंने दो चार ट्रिप्स मारे हैं इन द गल्फ.
4: अच्छा.
3: तो वो तभी काफी तनावपूर्ण था. वहां पर नाइट टाइम नेविगेशन कराते थे हमसे, जो PNI क्लब है, प्रोटेक्शन एंड इंडेमनिटी क्लब होती है, जो इंश्योरेंस करती है. तो वो हमको डायरेक्शंस देते थे कि ये कोऑर्डिनेट से वो कोऑर्डिनेट तक इतने बजे से इतने बजे तक दूरी पूरी करनी है रात में. तो हम उस हिसाब से चलते थे, और अगर कुछ हो जाए तो देन ऑब्वियसली वी आर कवर्ड बाय दी अंडरराइटर्स कवर. तो तभी थोड़ी सी तनाव थी, लेकिन जैसे अभी सुनने में आता है उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं थी.
4: तो वहाँ की मौजूदा स्थिति को देखते हुए वर्षों पहले जब आप उस रेखा पर थे, तब की तुलना में खतरे का स्वरूप आज कितना बदल गया है?
3: ये काफी ज्यादा है, उसकी तुलना तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे तरह वो इराक वॉर में इतना खतरनाक नहीं था. और जो मेरे बैचमेट्स और जो मैं अभी भी वही इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो काफी लोग हैं हमारे जूनियर्स, अभी जो कप्तान हैं जहाजों के ऊपर उनके साथ में और या उनकी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह सब जो बात होती है, तो वो पता लगता है कि उनका बहुत बुरा हाल है और उनकी स्थिति काफी नाजुक है. खाना खत्म हो रहा है, पानी नहीं है, और शिप्स पानी नहीं बना सकते जब तक उनका एग्जॉस्ट टेम्परेचर, शिप्स का इंजन चलेगा तो एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऊपर आएगा, फिर उनकी पानी बनाने की क्षमता होती है. तो और इतनी ज्यादा जहाज है कि उनको बोट्स वगैरह से भी डिलीवर करने के लिए थोड़ी सी लाइन लगानी पड़ती है. तो और फिर कोई किनारा नहीं जा सकता, मतलब जो हम आम हमारी लाइफ होती है कि किधर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ या वॉक के लिए चले जाओ या किधर शॉपिंग या सिनेमा चले जाओ, वो सब बंद है उनका. तो इट इज काफी इम्प्रिजनमेंट जैसे है, वही चार दीवारी में और एंकर पे खड़े हैं. तो इट इज तुलना कर ही नहीं सकते, इट इज काफी मुश्किल है.
4: और फिर कहां के ऊपर जी, कहां से कोई अटैक हो जाए आप वो भी नहीं बता सकते.
3: हाँ, जी. और नजदीक ही उनको मिसाइल्स गिर रही हैं और कहीं कहीं फ्लेयर्स दिख रहे हैं. तो काफी बुरा हाल है. और ये है न्यूट्रल कंट्रीज के सी फेयरर्स, जो जिनका ना कुछ लेना ना देना, रोटी कमाने गए घर बार बच्चे छोड़ के, तो काफी मुश्किल हाल है.
4: जी, जैसा आप बता रहे हैं कि लॉजिस्टिकली बहुत सारी चीज़ें उनके लिए जो वहाँ पर लोग फंसे हैं पॉसिबल नहीं हो, जैसे कि खाना यहाँ तक कि पानी, लेकिन मेंटल हेल्थ को लेकर आप क्या समझ रहे हैं, क्या स्थिति होगी उन लोगों की जो वहाँ पर अभी उस नाजुक स्थिति में फंसे हैं?
3: मेंटली स्ट्रॉन्ग कॉम है ये.
4: अच्छा.
3: ये वैसे भी है कि दो दो महीने के लंबे लंबे सफर करते हैं, वॉयज करते हैं आउट एट सी, अभी अमेरिका से जा रहे हैं या साउथ अमेरिका से लेके जाते हैं कार्गो टू चाइना जापान, तो एक एक डेढ़ डेढ़ महीने का वॉयज होता है. तो इस हिसाब से वो ठीक है, लेकिन अगर बाकायदा जहाज चलता रहे, अपनी ड्यूटी करते रहे, पानी बनते रहता है और खाना उन्होंने लिया हो अपने उस हिसाब से, फ्रोजन भी और ड्राई मील्स

0: भी, तो वो सब ठीक ठाक चलते रहते हैं, नथिंग इज अनएक्सपेक्टेड। वैसे अगर अब अगर समझो जहाज उधर से कार्गो लेके अपना तेल लेके अगर जापान जा रहा है, तो उनका 15 दिन का वॉयज है, तो उस हिसाब से उन्होंने खाना लिया होगा, पानी लिया होगा, फ्यूल लिया होगा, और अभी अगर 2 महीने हो गए हैं तो वो सब खत्म होने के शुरू हो जाता है। मेंटली वो जहाज के ऊपर रहना तो भी वो संभाल लेते हैं, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा जो हो रहा है, वो मिसाइल्स गिर रहे हैं और टर्मिनल्स चल रहे हैं, वो सब दिख रहा है उनको, इट इज विद इन आई साइट रेंज। तो वो और फिर द फैक्ट के कभी भी इनके ऊपर भी लग सकता है, और अगर आप 1 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हाइड्रोकार्बन में बैठे हो,
1: जी
0: तो वो तो उसके ऊपर एक भी मिसाइल अगर वो चिंगारी भी लग जाए, तो इट इज बिकम अ वेरी बिग
1: जी
0: हैजर्डस मटेरियल ना, तो
1: जी
0: वो बड़ा मुश्किल है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए आज जानल जी, और हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी बताने के लिए कि जो वहाँ लोग फंसे हैं उनका मनोबल या उनकी स्थिति किस प्रकार होगी।

0: तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को आप तक लेकर आई नताशा कॉल, और आप हमें 04397997667 पर ज़रूर बताएं कि ये जो रिपोर्ट है आपको कैसी लगी थी। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, लौट कर आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। सुनते रहें SBS हिंदी।
1: Out here, if you're doing nothing, you're doing everything right. Though on a cruise with Norwegian, even if you're doing nothing, you're still basking in the warm sun, enjoying the peaceful ocean waves. You're breathing. Don't forget about breathing. Definitely need to be breathing. So you get to do nothing or everything, but you still need to be breathing. It's like really important.
2: Experience the difference with cruises to Alaska, the Caribbean, and Europe. Norwegian Cruise Line. It's different out here. Visit ncl.com, call your travel advisor, or 1-888-NCL-CRUISE. Norwegian Cruise Line ships registry with Bahamas and USA.
3: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
4: SBS Audio.
5: अपने मनपसंद ऑडियो को सुनने के लिए प्ले दबाएं।
6: यहीं जाओ दादिया, जुम्बे हाल में।
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi उपलब्ध करवाता है।
11: Far from the partisan politics.
12: 60 से अधिक भाषाओं में समाचार के साथ आपके मूड से मेल खाने वाला संगीत और मनोरम पॉडकास्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। SBS Audio ऐप डाउनलोड करें या फिर
13: sbs.com.au/audio।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो वक्त हो रहा है 5:20, और ब्रेक से पहले हमने आज की खबरें सुनी और साथ ही हम एक खास रिपोर्ट लेकर आए थे, जहां हमने बात की एक ऐसे नाविक के साथ जिन्होंने स्ट्रेट ऑफ होमस में काम किया है और उन्होंने अपना जो अनुभव है हमारे साथ साझा किया। चलिए आपको बता दूं कि यदि आज के कार्यक्रम में आप मेरे साथ ज़रा देरी से जुड़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारा कोई भी कार्यक्रम या अंश SBS हिंदी की जो वेबसाइट है यानी sbs.com.au/hindi पर जाकर सुन सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक पेज है, वहां आप हमें SBS हिंदी के नाम से ढूंढ सकते हैं, और साथ ही हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, तो इंस्टाग्राम पर जाकर आप हमें बिल्कुल जल्दी से फॉलो कर लें और देखें कि कैसे हम नए अंदाज में ऑस्ट्रेलिया और विश्वभर की खबरें आप तक लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये अगली रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव से जुड़ी है, जहां हम समझने की कोशिश करेंगे कि अपने देश भारत से दूर यहां अपने बच्चों और उनके परिवार के साथ रहने का ये सफ़र किस तरह के अनुभव लाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन चुनौतियों से वो गुजरते हैं। इस विषय पर नबील हसन ने अलग अलग परिवारों से बात की और एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से भी इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की है। आपको बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है ये दो भागों में है, तो आइए सुनते हैं इसका पहला भाग।
14: ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों के साथ रहने आने वाले भारतीय माता पिता, खासकर वो जो रिटायर हो चुके हैं, ये जिंदगी के उस दौर में हैं जहां बच्चे और कभी कभी ग्रैंड चिल्ड्रन भी उनके साथ होते हैं। उनके लिए ये सफर अक्सर खुशियों, सुकून और परिवार के करीब आने का एक मौका होता है, लेकिन इसके साथ ही कई चुनौतियां भी जुड़ी होती हैं, जैसे सोशल आइसोलेशन, कल्चरल एडजस्टमेंट और बदलते जीवन शैली के साथ खुद को ढालना। इस खास रिपोर्ट में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अनुभव कितना आसान, कितना सुखद और कितना चुनौतीपूर्ण होता है। SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। सबसे पहले बात करते हैं नीरा कपूर जी से, जो अपने परिवार के साथ मेलबर्न में रहती हैं। वो 2008 में ऑस्ट्रेलिया आई थीं और यहाँ उनकी 3 बेटियाँ हैं। बच्चों के बिजी रूटीन के बीच खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एंगेज रखने के बारे में वो बताती हैं।
15: मिनट टू मिनट मैंने अपना रूटीन रखा हुआ है। सबसे पहले उठते ही प्रभु का शुक्राना करती हूँ, मेडिटेशन करती हूँ, उसके बाद स्वाध्याय, देन आई हैव जॉइंड फर्स्ट योगा क्लास ऑनलाइन फ्रॉम इंडिया, उसके बाद लंच, थोड़ा सा रेस्ट, और फिर मैंने सेकंड योगा क्लास ऑन जूम विद लोकल ग्रुप के साथ किया हुआ है, तो वो फिर 2.5 घंटे का होता है। उसके बाद जब 4:15 में खाली होती हूँ तो थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ बाय गोइंग थ्रू माय व्हाट्सएप ग्रुप, चाय लेती हूँ, थोड़ा वॉक करती हूँ, उसके बाद थोड़ी एक्टिविटीज करती हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी हॉबीज हैं, जैसे सॉल्विंग द वर्ड पजल, लिसनिंग म्यूजिक, पेंटिंग विच is my favorite and which I can do non-stop for hours together. It's like meditation for me.
14: Community groups or social activities ne bhi Neeraj ji ki zindagi mein kafi badlav laaye hain.
15: Maine yahan par kafi community groups join kiye hue hain jahan par mujhe new activities seekhne ka bhi chance milta hai aur jo meri already hobbies hain jaise gardening hai, painting hai, तो उसे एडवांस सोर्सेस करने का आपको स्ट्रक्चरली मौका मिलता है. फिर उसके बाद कम्युनिटी सर्विस का मौका मिलता है जिससे बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है. थर्ड थिंग, मैंने प्रैक्टिस बनाई है, एवरी ईयर आई मस्ट वॉच वन इंग्लिश म्यूजिकल शो, वन पेंटिंग एग्जीबिशन, वन इंडियन क्लासिकल शो और कॉमेडी शो या गुलजार जी आगे जो मेरी मतलब के होते हैं वो एक शो वो भी जरूर देखती हूँ.
14: भले ही वो अपने परिवार के बीच हैं लेकिन कभी कभी अकेलेपन का एहसास भी होता है.
15: कभी कभी बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है पर आपको अपने साथ रहना सीखना पड़ता है, तो उसके लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ कनेक्टेड रहती हूँ. और जब भी कभी फैमिली में कोई शादी होती है आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उसको जरूर अटेंड करूं. किसी भी एक बेटी के साथ चली जाती हूं और सारे परिवार से मिलकर आती हूं और एक बार फिर से नई ताज़ा हो जाती हूं.
14: भारत और ऑस्ट्रेलिया की रोज़मर्रा जिंदगी की तुलना करते हुए नीरज जी कहती हैं,
15: ऑस्ट्रेलिया की लाइफ बहुत स्ट्रक्चर्ड लाइफ है. आपको हर चीज बहुत पहले से प्लान करनी पड़ती है, कहाँ जाना है, कौन आ रहा है, कैसे तैयार होना है, कैसे जाना है, किससे मिलना है, क्योंकि सब कुछ आपने खुद करना है. यहाँ डोमेस्टिक हेल्प मेरे को हफ्ते में एक बार कुछ घंटों के लिए मिलती है, तो उसको आपने कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, उसे क्या क्या घर का काम करवाना है, या आपकी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, या आपने शॉपिंग के लिए जाना है, अपनी इंडियन ग्रॉसरी के लिए जाना है, उसे कैसे यूज करना है. जबकि वहाँ पर सारा दिन आप रोज आपकी हेल्प आती थी, आपके ड्राइवर थे, गाड़ियाँ थी, यहाँ पे आपको सारा कुछ अपने आप करना है. सो आप बहुत एक्टिव हो जाते हैं और यही आपका अच्छी सेहत का राज है क्योंकि यू आर ऑलवेज अप टू समथिंग.
14: नीरा कपूर के अनुभव ये दिखाते हैं कि परिवार के साथ रहना सुकून देता है लेकिन इमोशनल और सोशल एडजस्टमेंट भी उतना ही जरूरी होता है. इसी संदर्भ में हमने नीरजा शंकर से भी बात की जो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साउथ एशियन कम्युनिटीज पर माइग्रेशन के प्रभाव खासकर मेंटल हेल्थ के पहलू पर रिसर्च कर रही हैं. उनकी रिसर्च खासतौर पर पेरेंट्स और पेरेंटिंग के अनुभव पर केंद्रित है. नीरजा, जब बच्चे अपने माता पिता को ऑस्ट्रेलिया बुलाते हैं और साथ रहते हैं तो यह अनुभव खुशियों भरा जरूर होता है लेकिन क्या अकेलापन और एडजस्टमेंट जैसे चैलेंजेस भी सामने आते हैं?
4: I think दोनों होते हैं Nabil, it's a balance of everything. Parents को ये picture perfect सिर्फ clean environment या better lifestyle की वजह से नहीं महसूस होता. मेरे ख्याल से वो जो उनका खुद का गर्व होगा जो you know वो अपने बच्चों को एक नए environment में देख रहे हैं और ऐसे successfully thrive करने में उनको बहुत खुशी होती है, उसकी वजह से भी वो picture perfect वाली feeling आ सकती है. लेकिन of course like आपने mention किया वो loneliness और वो adjustment बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं जो सब लोग महसूस करते हैं, especially जो you know especially जो वो parents थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं आते. सो अगर वो सिर्फ यू नो 6 months या 12 months के लिए आ रहे हैं तो वो एडजस्टमेंट और मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो दो जगह के बीच में रह रहे हैं. वो यहाँ पर प्रेजेंट होना चाहते हैं लेकिन वो फिर भी अपने लाइफ अभी भी इंडिया में लिव करते हैं, तो वो कैसे दोनों जगहों को कैसे बैलेंस करनी होती है वो एडजस्टमेंट थोड़ी डिफिकल्ट होती है जो पेरेंट्स लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं आते।
14: ऐसे कौन से मेंटल या इमोशनल चैलेंजेस होते हैं जो शायद बाहर से नहीं दिखते लेकिन पेरेंट्स शायद महसूस करते हैं लेकिन जाहिर नहीं कर पाते?
4: वो वो जो गर्व और खुशी होती है उनकी बच्चों को देखते हुए, उसके साथ दुख भी हो सकता है जो बाहर से शायद हमें नहीं दिखता हो, जैसे कि दुख के उनके बच्चे सब खुद कर रहे हैं यहाँ पर, और जो इंडिया में सपोर्ट्स होते हैं, या वो घर के सपोर्ट्स हो या सोशल सपोर्ट्स हो, जो भी हो, वो यहाँ बहुत अलग है। सो उसके वजह से थोड़ा दुख हो सकता है। जो पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए आ रहे हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं आ रहे हैं, उनको ये भी लग सकता है कि वो अपने बच्चों से कितने दूर रह रहे हैं और उनकी लाइफ कितनी अलग तरीके से चल रही है, और इस दूरी की वजह से वो पेरेंट्स ये भी दुख महसूस कर सकते हैं कि वो और मदद नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चों की। और यहाँ पर जो हमने पहले बात किया था वो लोनलीनेस की वजह से भी, कि यहाँ उनकी या वो यहाँ हमेशा मूव कर रहे हो या थोड़े दिन के लिए आए हैं, वो रूटीन बदलता है, को वो जो नॉर्मल वो उनकी लाइफ है, जो वो रूटीन में यूज्ड टू है, वो सब यहाँ पर नहीं होते, तो उसमें भी थोड़ा मुश्किल होता है कि वो ये शायद शेयर नहीं करना चाहते कि वो खुश नहीं है या वो स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चे इतने मेहनत से उनको यहाँ लेकर आए हैं, लेकिन अंदर थोड़ी सी वो फीलिंग भी हो सकती है कि मेरी जो चीजें मैं जानती हूँ वो यहाँ नहीं है, तो उसकी वजह से मैं अपना नॉर्मल रूटीन भी नहीं कर पा रहे हैं।
14: SBS हिंदी पर हमारी इस खास रिपोर्ट में हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय माता पिताओं के अनुभवों पर, उनकी खुशियां और चुनौतियां। ये रिपोर्ट दो भागों में प्रस्तुत की जा रही है। दूसरे भाग के लिए बने रहिए SBS हिंदी पर। इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत।
0: तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये अंश सुनकर आपको अच्छा लगा होगा। इस अंश से संबंधित कोई भी सुझाव यदि आपको देना है तो आप मुझे 0439799767 पर ज़रूर बताएं। और आपको बता दूं कि इसका जो दूसरा भाग है वो हम जल्द सुनेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
13: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
13: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
13: It's all right.
7: We're so far up here.
13: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
16: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
17: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
18: Starting a new life in Australia isn't easy.
19: A lot of companies have rejected me.
20: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
18: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
21: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: sbs.com.au/hindi को अपना ऑनलाइन होम बनाइए। ताज़ा तरीन खबरें अपनी भाषा में पाइए। sbs.com.au/hindi पर जाएं। क्या आपको SBS हिंदी सुनना अच्छा लगता है? अपनी बातचीत हमसे जारी रखिए हमारे फेसबुक पेज पर। हमारा पेज लाइक करें। SBS हिंदी फेसबुक पर भी है।
0: तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो आपको बता दूं कि चेतन शाह जी का हमें सिडनी से संदेश आया है, लिखते हैं, हाय भव्या, लिसनिंग, यू नो वी आर लिसनिंग एंड एंजॉयिंग द प्रोग्राम, और कह रहे हैं ग्रेट टॉपिक्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग। तो आपके संदेश के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप अपने संदेशों के माध्यम से हमें बताते हैं कि आपको आज का हमारा जो कार्यक्रम है वो कैसा लग रहा है। बाकी श्रोता जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं मंडे की शाम, वो मुझे 04397997667 पर ज़रूर बताएं कि आज का जो कार्यक्रम है वो उन्हें कैसा लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ब्रेक से पहले हमने बातचीत की थी कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जो भारतीय माता पिता और वरिष्ठ नागरिक होते हैं, उनके अनुभव आखिर कैसे होते हैं, किन तरह की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ता है जब वे भारत से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, और साथ ही किस तरह से ये सभी चीज़ें जो हैं उनकी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकती है। तो आइए सुनते हैं इसी अंश का दूसरा भाग।
14: SBS हिंदी पर मैं हूं नबील हसन। इस ऑडियो पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले इंडियन पेरेंट्स की, जो अपने बच्चों के परिवार के साथ यहां आकर रहते हैं। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में यहां क्या खुशियां हैं, क्या चुनौतियां हैं, और कैसे वो अपने आप को एंगेज्ड और कनेक्टेड रखते हैं। ये इस रिपोर्ट का दूसरा भाग है। अब बात करते हैं 74 वर्ष के अनिल खन्ना जी से, जो ऑस्ट्रेलिया में अपने लगभग 50 साल पूरे कर चुके हैं।
2: थैंक यू वेरी मच। My journey with Australia goes back to almost 50 years. This is I'm running my 50th year. और हम blessed हैं कि भाई एक बेटा हमारा छोटा बेटा हूँ, उसके took over the family business. वो with his family India में है, यहाँ elder son in Australia Melbourne. तो India जाते हैं तो वहाँ soul rejuvenation हो जाती है, यहाँ आइए तो आपके हाथ mind body को पूरी rejuvenation हो जाती है, वहाँ जाए तो आपका
14: ऑस्ट्रेलिया में परिवार के अलावा जो आपकी दोस्ती यारी है, कम्युनिटी बनी है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
2: बहुत क्या कहना चाहिए, क्लोज और सपोर्टिव रिलेशनशिप्स हैं। जब मैं पहली बार ही आया था तो मिस्टर डेविड मैथ्रॉन इम्पोर्ट मैनेजर थे मायर्स के अंदर, और उनसे मेरा कनेक्शन हुआ। उन्होंने मुझे एक संडे को जो है उन्होंने बारबेक्यू पार्टी अपने घर में अपने बैकयार्ड में करी, मुझे वहाँ बुलाया, तो वहाँ मुझे ऑस्ट्रेलियन कल्चर नजर आया, फील करा, एक्सपीरियंस करा। आज भी उनके संग मेरा कनेक्शन है। मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग होती है यार, ये लोग यहाँ पे 50 साल 60 साल 70 साल 75 साल से रह रहे हैं, एंड हाउ दे हैव ग्रोन अप एंड हाउ दे हैव treasured their values and also are Australians by nature, by culture. You know, finding that balance of being an Indian and being an Australian at the same time is something which the seniors have to have in order to lead a joyous life, an open, fulfilling life in Australia. I think that is very important.
14: यहाँ के जो लोकल कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, त्योहार होते हैं, या फिर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, उनका अनुभव कैसा रहा है?
2: यहाँ के जो फेस्टिवल्स होते हैं, मोम्बासा क्रिसमस के, और आपके कप होते हैं, वो भी मैंने देखे, एंजॉय करा। और जहाँ जहाँ स्टेट्स के अंदर हम गए, वहाँ पे उस वक्त जो लोकल फेस्टिवल्स थे जो हो रहे थे, उनको देखा, एंजॉय करा। इट्स अ रिच थिंग। आई हैव येट टू गो टू पर्थ, यू नो, वन डे आई विल गो देयर आल्सो, स्पेंड सम टाइम देयर। तो अब यही है कि जब मैं आऊँ तो माय ग्रैंडचिल्ड्रन हैव ग्रोन अप Now they're all college going and the elder one is already working. So bhai unke sang main kehta hun ya trip plan karke rakho. Jab hum aaye to we can travel. There are so many states to travel and so much to learn in Australia. So this amazing Australia amazes me. Incredible Australia keeps me fully rooted.
14: अनिल जी, जो माता पिता यहाँ आइसोलेशन या फिर लोनलीनेस महसूस करते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: भाई उनको मैं यही कहूँगा, you have to have an open mind and an open heart. अगर आपका हार्ट ओपन है तो किसी भी आप इंसान से मिलें, किसी भी देश में मिलें, तो instead of judging them and comparing them, try to accept them. Respect करोगे तो understanding है, अंडरस्टैंडिंग है तो एक्सेप्टेंस है, और एक्सेप्टेंस है तो अप्रिसिएशन है यार. अगर आप उसको समझे, यार हमारे यहाँ तो ये होता है तो तुम्हारे यहाँ होता है, जब इंडिया में हो तो वो करना, अब ऑस्ट्रेलिया में हो, व्हेन यू आर इन रोम डू एज द रोमन्स डू. यार एसोसिएशंस के मेंबर बनो, जाओ वहाँ पे, मिलो लोगों से, एंड द मोर यू आर गोइंग टू मिक्स विद पीपल द मोर देयर इज गोइंग टू बी फन, एडवेंचर एंड लर्निंग, तीनों चीजें होंगी भाई.
14: अनिल खन्ना जी के अनुभव ये दिखाते हैं कि समय के साथ लोग यहाँ अपनी एक मजबूत सोशल और कम्युनिटी लाइफ बना सकते हैं, लेकिन इसमें कल्चरल कनेक्शन का भी एक बड़ा रोल होता है. इसी संदर्भ में नीरजा शंकर, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और साउथ एशियन कम्युनिटीज के बीच पेरेंट्स और मेंटल हेल्थ के मुद्दे पर रिसर्च कर रही हैं, वो बताती हैं कि कम्युनिटी और अपने कल्चर से जुड़े रहना इन पेरेंट्स के वेलबींग के लिए कितना जरूरी है.
4: बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है. मैं ये रेकमेंड करूंगी कि जो भी यहाँ मूव करे वो ऐसे कम्युनिटी ग्रुप्स या अपने कल्चर के साथ टेम्पल्स या चर्चेज या मॉस्क्स जो भी हो उनका, जो वो जुड़े हों और वो कनेक्टेड हों, वो डेफिनेटली उसे अटेंड करें, क्योंकि रिसर्च हमें बार बार दिखाता है कि माइग्रेंट्स की मेंटल हेल्थ सबसे प्रोटेक्टेड होती है जब हम दोनों अपने ऑस्ट्रेलियन और इंडियन कल्चर्स के साथ जुड़े रहते हैं. ये नहीं कि यहाँ है तो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कल्चर के साथ हम जुड़े रहें, वो रिसर्च दिखाता है जब हम ऐसे करते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ एक्चुअली और बुरी होती है. तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने वो कम्युनिटी ग्रुप्स और सब में शामिल हो. प्लस इन ग्रुप्स में शामिल होना वेलबींग के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये ग्रुप्स में वो लोनलीनेस कम्बैट कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने एक्सपीरियंसेस में कनेक्टेड फील कर सकते हैं. जैसे कि हम शेयर कर सकते हैं कि क्या हमारी खुशी है, क्या हमें थोड़ा मुश्किल लगता है यहाँ पर, और इनवेरिएबली और लोगों को ऐसे भी हो सकता है, तो हम कनेक्टेड फील कर सकते हैं कि हाँ हमारे एक्सपीरियंस में हम अकेले नहीं हैं, और लोग हैं जो ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, और हमें वो सपोर्ट भी मिलता है उससे.
14: SBS हिंदी के लिए ये रिपोर्ट आपके लिए प्रस्तुत की नबील हसन ने. इस ऑडियो पॉडकास्ट में व्यक्त किए गए विचार व्यक्तिगत हैं, SBS ना तो इनसे सहमत है और ना ही असहमत.
0: तो दोस्तों, आप भी हमें 04397997667 पर बता सकते हैं कि ये जो अंश है आपको कैसा लगा, और साथ ही बताएं कि क्या आप अपने माँ बाप को कभी ऑस्ट्रेलिया लेकर आए हैं, और उनका अनुभव पहली बार किसी दूसरे देश में जाने का कैसा था. ज़रूर अपने संदेश हम तक भेजें. कुछ संदेश मुझे आ रहे हैं जो कि जल्द पढ़ूंगी इस आखिरी ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद हम भारत से खबरें भी सुनेंगे, तो जुड़े रहें मेरे यानी भव्या पांडे के साथ.
3: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. He's not in an RV. He's at home on a stair machine.
5: And staring at a not-so-motivational poster on my wall.
3: Meanwhile, road you never lacks motivation, because he's in an RV covered by Geico, with RV specialists who are as passionate about RVs as you. In fact, he only stares at views from on top of a mountain.
22: I'm on top of the world!
3: How's that for motivation, home you? It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
18: Starting a new life in Australia isn't easy.
19: A lot of companies have rejected me.
20: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
18: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
0: SBS हिंदी हर समय उपलब्ध है। जब भी आप चाहें किसी भी मोबाइल पर हमारे पॉडकास्ट बिल्कुल मुफ्त सुनें। sbs.com.au/hindi पर जाएं या SBS ऑडियो ऐप डाउनलोड करें। अपने पसंदीदा प्रोग्राम सुनने के लिए हमारी ऑडियो ऐप आज ही डाउनलोड करें। ये ऐप स्टोर और गूगल प्ले पर मुफ्त उपलब्ध है। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद SBS हिंदी के कार्यक्रम पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ। तो सोमवार का दिन है और अक्सर हम आप तक भारत की खबरें लेकर आते हैं, लेकिन अक्सर यह होता है कि हम अपने कार्यक्रम के पहले भाग में या फिर जल्द आपको ये खबरें सुना देते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा कि ये खबरें आपको ना सुनाए जाएँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो चलिए सुनते हैं खबरें भारत से।
8: स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश है भारत के समाचार। चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से आ रहे विधानसभा के 11:30 बजे तक के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी न केवल असम और पुडुचेरी में वापसी करती दिख रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल में भी सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस को हराती दिख रही है। पश्चिम बंगाल के 293 सीटों के रुझानों के अनुसार भाजपा 180 सीटों पर बढ़त बना पहली बार सत्ता में आती दिख रही है, जबकि तृणमूल कांग्रेस मात्र 109 सीटों के साथ एक बड़ी हार की तरफ जाती दिख रही है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने ही गढ़ भवानीपुर में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के चेहरे शुभेंदु अधिकारी से कभी आगे तो कभी पीछे चल रही हैं। पिछले चुनावों में तृणमूल 215 और भाजपा 77 सीटों पर जीती थी। दूसरा बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में होता दिख रहा है, जहां नए राजनीतिक खिलाड़ी एक्टर विजय थलापति की पार्टी टीवी के सरकार बना सकती है। यहां 234 सीटों में टीवी के 105 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि विपक्षी AIADMK 77 सीटें लेकर दूसरे स्थान पर है। सत्तारूढ़ DMK केवल 55 सीटों पर ही आगे है। केरलम में कांग्रेस का UDF गठबंधन 98 सीटों के साथ जीत की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सत्तारूढ़ वामपंथ का LDF गठबंधन केवल 39 सीटों पर ही आगे है। असम में 126 सीटों में भाजपा 95 सीटों में बढ़त के साथ तीसरी बार फिर से सरकार बनाती दिख रही है। कांग्रेस केवल 29 सीटों पर ही जीतती दिख रही है। केंद्र शासित पुडुचेरी की 30 सीटों पर ऑल इंडिया NR कांग्रेस की अगुवाई में NDA एक बार फिर जीतती दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि ये केवल अभी रुझान है और अंतिम नतीजों में उलट फेर भी हो सकता है। परमाणु ऊर्जा सेक्टर का जायजा ले इस क्षेत्र में उभरते मौकों का लाभ लेने और अमेरिकी व भारत सरकार के बीच बेहतर तालमेल बिठाने के उद्देश्य से अमेरिका का एक उच्च स्तरीय न्यूक्लियर एग्जीक्यूटिव मिशन 17 से 21 मई तक भारत का दौरा करेगा। वॉशिंगटन DC स्थित लॉबी ग्रुप न्यूक्लियर एनर्जी इंस्टीट्यूट और US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा आयोजित यह इंडस्ट्री प्रतिनिधिमंडल परमाणु ऊर्जा विभाग और नीति आयोग के उच्च अधिकारियों, ऊर्जा से जुड़े अन्य मंत्रालयों और सरकारी स्वामित्व वाली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल की विदेश मंत्री एस जयशंकर, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू से भी मुलाकात अपेक्षित है। आपको बता दें कि पिछले साल संसद ने भारत की ऊर्जा को बदलने के लिए परमाणु ऊर्जा का सतत दोहन और संवर्धन यानी शांति अधिनियम 2025 पारित किया था, जो भारत के कड़े नियंत्रण वाले परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के संचालित होने के तरीके में एक बड़ा बदलाव था। इस अधिनियम ने पहली बार निजी कंपनियों को इस अहम क्षेत्र के संचालन पक्ष में साथ ही ईंधन प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति दी थी। शनिवार सुबह 11:42 पर भारत में मोबाइल फोन पर साइरन की तेज खतरनाक आवाज ने करोड़ों लोगों को न केवल हैरान परेशान कर दिया बल्कि बहुतों को डरा तक दिया। तेज आवाज के साथ स्क्रीन पर लिखा था एक्सट्रीमली सीवियर अलर्ट, जिसके नीचे अंग्रेजी और हिंदी में एक मैसेज भी था। सायरन बंद हुआ तो मोबाइल पर मैसेज भी पढ़कर सुनाया गया। भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा शुरू की है, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक, सुरक्षित राष्ट्र। इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है, यह एक प्रेक्षण संदेश है। NDMA यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने इस मैसेज के माध्यम से आपातकाल में लोगों तक सूचना पहुंचाने के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया था। देश के सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली NCR में लगभग 75 करोड़ मोबाइल फोन पर यह टेस्टिंग मैसेज एक साथ भेजा गया था। हालांकि सरकार ने दो दिन पहले ही एक SMS भेजकर लोगों से अपील की थी कि इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट ट्रायल के दौरान यानी टेस्टिंग वाला मैसेज मिलने पर घबराए नहीं, लेकिन SMS ना देखने की आदत की वजह से बहुत से लोग इसे समझ नहीं पाए। इमरजेंसी की स्थिति में लोगों को रियल टाइम अलर्ट देने के लिए सरकारी संस्था सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी CDOT ने इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम सचेत को विकसित किया है। यह सिस्टम कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल पर आधारित है। इसे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक्टिव कर दिया गया है। सरकार के अनुसार इस सिस्टम के जरिए अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं जैसे मौसम में बदलाव और चक्रवात के लिए अब तक 134 अरब से ज्यादा अलर्ट भेजे भी जा चुके हैं। ओलंपियन महिला पहलवान और हरियाणा में कांग्रेस के विधायक विनेश फोगट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर एक बार फिर से गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर करते हुए विनेश ने कहा कि वे पिछले 6 महीने से कुश्ती में वापसी के लिए कड़ा अभ्यास कर रही हैं, लेकिन महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपी पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के गढ़ गोंडा में सीनियर ओपन रैंकिंग कुश्ती टूर्नामेंट में शामिल होना उन जैसी महिला पहलवानों के लिए बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने भारत सरकार और खेल मंत्रालय द्वारा कुश्ती से संबंधित सभी निर्णय पूर्व सांसद के सहारे छोड़ने की पुरजोर आलोचना करते हुए बड़ा खुलासा किया कि पूर्व सांसद के खिलाफ शिकायत करने वाली 6 पीड़ित महिला पहलवानों में वे खुद भी शामिल हैं।
9: कुछ मजबूरियां ऐसी है कि मैं आप सबको बताना चाहती हूं। मैं अभी नहीं बोलना चाहती थी कि कोर्ट में केस पेंडिंग है, देश के सामने सब सच्चाई आ जाएगी, लेकिन मैं बताना चाहती हूं कि मैं 6 में से 1 विक्टिम में खुद हूं जिसने कंप्लेन दी थी और हमारी दवाइयां भी चल रही हैं। आज भी ब्रजभूषण बोलता है कि रेसलिंग फेडरेशन पे उसका दबदबा है, उसी के लोग उसने बिठा रखे हैं, वो खुद पूरे देश के सामने बोलता है, लेकिन फिर भी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री या भारत सरकार कुछ भी कदम नहीं उठाती है। अगर मैं उस कंपटीशन में जाऊंगी, मेरे साथ मेरी टीम भी होगी, हमारे वेल रिसर्च भी होंगे, किसी के साथ में कोई दुर्घटना अगर होती है तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि उसकी सीधी सीधी भारत सरकार जिम्मेदार होगी, क्योंकि वो आदमी ब्रजभूषण जो खुद।
8: सरकार की ओर से अभी तक इस विषय पर कोई बयान नहीं आया है। आपको ज्ञात होगा कि सन 2023 में विनेश समेत कई पहलवानों ने सांसद ब्रजभूषण पर महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था। इसे लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने सांसद के खिलाफ धरना भी दिया था। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हिंद महासागर में स्थित भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप में भारत सरकार की नीतियों को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने 160 वर्ग किलोमीटर में फैले निकोबार के घने जंगलों की नैसर्गिक खूबसूरती दिखाते हुए और वहां के मूल निवासी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह निकोबारीज और शॉम्पेन का जिक्र करते हुए वहां अडानी समूह द्वारा बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देश के सबसे बड़े घोटालों और पारिस्थितिक संपत्ति की सबसे बड़ी चोरियों में से एक बताया।
10: Thousands and thousands and thousands of acres of rainforest, and what is happening here is that all these trees are going to be cut with total disregard for the people who live here, with total disregard for the damage this is going to do to India's ecology. It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth lakhs of crores.
8: भाजपा श्री गांधी के इन सवालों को कांग्रेस का चीन प्रेम और चीन का प्रायोजित प्रोपेगेंडा बता रही है। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा का कहना है कि ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की समुद्री और आर्थिक शक्ति का नया अध्याय होने जा रहा है, जहां एक ओर विदेशी बंदरगाहों पर निर्भरता कम होगी, वहीं दूसरी ओर पर्यटन, रोजगार और स्थायी विकास को नई रफ्तार मिलेगी। लेकिन पर्यावरणविद इन प्रोजेक्ट्स को लेकर बेहद चिंतित हैं। उनका मानना है कि ये प्रोजेक्ट्स न केवल 160 वर्ग किलोमीटर के हरे भरे पुराने वर्षावनों की जगह लेंगे, बल्कि इनके चलते कोरल रीफ, कछुए के अंडे देने की जगहों के नष्ट होने और आदिवासियों के जीवन पर दुष्प्रभाव जैसे दूसरे बुरे असर भी होंगे। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये हमने सुनी खबरें भारत से, और बताएं मुझे कि आज की शाम आप जुड़े हुए हैं मेरे यानी भव्या पांडे के साथ, और जब तक आप सभी के संदेश मेरे पास आ रहे हैं, सोच रही हूँ कि कुछ बढ़िया से गाने आज की शाम आपको सुनाते जाऊँ।

तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आज मेरे साथ जुड़ने के लिए SBS हिंदी पर बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ आज का जो कार्यक्रम है आपको पसंद आया होगा। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि यदि आज के कार्यक्रम से संबंधित कोई भी संदेश या सुझाव आपको भेजना हो तो नंबर है 04397997667। चलिए एक बार फिर से आप सभी से इजाजत लेती हूँ और जल्द लौटूंगी नई खबरों के साथ, नए गानों के साथ। तब तक जाने से पहले आज की शाम का ये आखिरी गाना सुन के जाएं।

गरीब चुप क्योंकि अमीरों की इजी बेल, अमीर है खुश क्योंकि गरीबों की लगी सेल। गलती है किसकी और बदले में कौन चाहता जेल, पन्ना है चीता या रहना तो मैं बस एक स्नेल। मजबूर हूँ कभी ना होती प्लेटफुल, हरकतें मानेगा समाज मेरी शेमफुल, अकेला ही करूंगा मैं सारा वेग पुल। याद रखना ऑफ द फन एंड ओनली बिग पुल।

0: SBS South Asian.
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

चलो आखिरी मुलाकात को यादगार बना देते हैं, जाते जाते तेरा ये वहम भी मिटा देते हैं। एक ही खासियत थी तुम में कि तुम्हें हम चाहते थे, आज तक यही झूठ कहा था तुमसे, चलो अब सच बता देते हैं।

0: कभी हीर तो कभी रांझा बेवफा हुआ था, मैंने ये बस कहानियों में सुना हुआ था। तेरे बाद ये धड़कता हुआ पुर्जा वहां भी ना लगा जहां लगा हुआ था। उतने ही करीब आ गई थी मौत जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था, जितने करीब तो उसके खड़ा हुआ था।
1: SBS South Asian।

0: गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो नाचो
1: अरे धूम धूम थिरके जा पाँव में जान जगा धुमक धुमक नाचे जा दुनिया हिला दे सारी नाचो नाचो नाचो।

असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

0: Your news from here
1: and hits from home. SBS South Asian.
2: Music MG. तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के. It's okay. तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़कियों के.